उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतिया तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालिया लोटे हाथ निबाग वे हर के संत।

आदि मुखों अपरस कहावे है, सदा सदा फिर है अभमानी, सगल कुटंब डुबावे है, जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जिस सतगुर भेटै पुनरप जन्म न आवे आसा।

बाजी हारी मुई मेरी माई हों खरा सुखाला पहरों नहीं दगली लगे ना पाला रहाउ बाल किस बापे जिन्हों जाया पंचा ते मेरा संग चुकाया पंच मार पावा तल दीने हर सिमरन मेरा मन तन पीने पिता हमारो वड गोसाई।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एकै ठाहर दोहां बसेरा कहो कबीर जन एको बूझिया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाऊ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो बहन भाणजी जिन्हें

आगम निर्गम जो तिक जान है, बहु बहु ब्याह करना, तंत मंत्र सब औखद जान है, अंत तहु मरना, राज भोग अर सतर संघासन, बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तहु मरना, वेद पुराण सिमरत सब खोजे, कहू न उबरना, कहो कबीर इं रामह जंपो, मेट जन्म मरना आसा, फीलर बाबी बल्द पखावज, कौआ ताल भजावे,

शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। का की मात पिता कहो का को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

न कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को पा

सुनडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो रहाओ, सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बूंद ना बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम हंस ले सदाना। बाबा बोलते ते कहां गए देही के संग रहते। सुरत माहे जो निरते करते

चरण रहे कर धरक परे है, मुखो नानक सह बाता थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते मृतक भय दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिचन महादेव छलिया, मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी, रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साच पछाण।

बिच राय, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुआन सब करे कराया, जो तुरली

चौपदे तथा पंचपदे आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे आठ दो तुके सात एक तुका एक एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद बिंद तेजन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उदर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहा बारक ते बिरद भया होना सो होया जां जम आए चोट पकरे तब है काहे रोया जीम ने की आस करह जम निहारे सासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत ताल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हों पांचो तत बराती राम राय स्यों पावर लै हों।

नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या।

अवतार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानं, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जय, पासना देख आग, काल पासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे, अब खुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका, राम नाम बस होई, अब मोहे लाचनो न आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करहै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीत।

मेरो पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन पेर एकै संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन

के दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हीरे हीरा वेद पवन मन सहजे रहे आसमाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुरगम दिया दिखाई हासा पहली कुरूप कुजात कुलखनी सोहरे पेये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआ लाव।

रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं सास।

मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काय करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काय करूं।

प्रणव पूर रहे हो तुम सर्व मही आसा मन मेरो गाज जिहवा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी।

अपना खसम त्यावो सोइने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को की जय ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जा।

जहां लग कर्म के बस जाए, काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान। भगत जन भय हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव। रहाउ संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंतावन, जनी लखाव हो संत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संगत मारे बासा। नीच रूख ते ऊच भये हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सत संगत सरन तुम्हारी, हम योगन तुम उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत विपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कमन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरी।

दूध पे आया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख देख सुन बोले, दौर्यो फिरत है रहाउ। जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रास कसै लुभाना, बिन

तन्ने जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बेख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाकै, अशली प्रभ पहचानिया, धन्य धन पाया तरनी तर, मिल जन संत।

पाखण कीत गुप्त हुए रहता, ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्णताहू को, मातरे जीत राही। हासा शेख फरीद जियो की बाणी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दिनहु मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दिदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए पारथिए, रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहूम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तुड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेव है गुर विचार रहाव राव सस दीपक जाके त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

जाई। हर मेरा धन मेरे साथ चाले, जहां हों जाऊं तह जाई। सो झूठा जो झूठे लागे, झूठे कर्म कमाई। कह नानक हर का पाणा हुआ, कहना कछु न जाई। गुजरी

हो गई। वेखो को व्योपाय बलिहारी गुर आपने, सद बलिहार जाऊ सतगुर मिले हर मन वसे, सहजे रह समाय रहाऊ जा पहु पाए अपना, बैराग उपजे मन आय बैराग ते हर पाईए, हर स्यों रह समाय से मुकत जे मन जिन है, फिर तात ना लागे आय। दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाए, नानक गुर ते गुर होया,

हृदय जिन कह कपट वस्स बाहर हूं संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवे साच बुझाए बिन पारस पूज ना हो वई बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजे।

रहे ता परम विचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वास करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चा

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भारहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख सागर।

हर सेती प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई मानस जन्म पुन कर पाया बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई नाम बिना रस कस दुख खावे मुख फीका थुक थूक मुख पाई जो जन हर प्रभ हर हर सरना तिन दरगहा हर हर दे वडे आई धन पन सबास कह प्रभ जन को जन नानक मेन लय गल लाई गुजरी महला चौथा गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मलाया रहाओ जां हर प्रभ पावे तां गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोहे मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर ध्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहे जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उदम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, तां कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिज

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरै हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब था।

जिस मालुख पह करूं बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे।

पदे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई, नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया, बिन सुनाया वह जाई, हर जप माया बंधन टूटे, पये कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे, रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे, भगत प्रेम रस माता, हरख सोग दोह माहे नराला, करने हार पछाता, जिसका सा तिन ही रख लिया, सगल जुगत बन आई, कहो नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहन ना जाई, गुजरी महला पंजवा, दो पदे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पतत पवित्र लिए कर अपने, सगल करत नमछकारु, वर्ण जात को पूछे नाही, बांछ चरण रवारु, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु, सगल श्रेष्ठ को तनी की जय, जन को अंग नरारु, रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारु, नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु, मुक्त पयो चमियारु, गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारु, जान कमन पता, शिव ब्रंच अर सगल मोन जन, गह नास काहे गता, प्रभ की अगम अगाध कथा, सुनिए अवर अवर वेद बुझ।

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंधेसा।

परी अचेत अयाने बारक नानक हम तुम राखो धार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बस हो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाहे समाये तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्ब प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पई करते की होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसे अर भोर।

आप जस मिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याइए रहाउ मोहे सरन दीन दुख भजन।

साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियानपा साध सरनी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराद सर्व सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कसना आवै काम सरन साधु निर्मला गात

पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महानिर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनकर

गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महावीर गरोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण योग मन तन बांछिए जा।

काम क्रोध अहंकार तदियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले,

पार सर्वदृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद्ध सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर तैसो जल देवे।

बूझे अंतर शब्द विचार। अब तबे और ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चात्रक अमृत जल मांगे।

ताय गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते भेख करह पिखिया को एते उदर परन कहताई। बिन हर भगत नाही सुख प्राणी बिन

बिना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई ऐ जी गुर की दात ना मेटै कोई मेरा ठाकुर आप दिवाई।

आय तू वड पुरख अगम सरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ। ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मगन हितं हिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरन। गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहिए।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

मल पख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावे सच कतनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल ना बुझेगी अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई, ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

बसियो मन आई त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सु

इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए। नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी। अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी। जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा। सबना का सहो एक है सद ही रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्नई ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी जिनको नदर करे। हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए। महला तीजा रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। उपाए किते ना पाईए हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए। इसनों कूड़ बोल के खुआली है।

आय नानक हुकुम ना जातु खसम का जे रहा सच सुमाय महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाय इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना ओ चक्का ले जाय एहो हर धन जीए सेती रव रहया जीए नाले जाय पूरे गुरते पाई है मनमुख पल्लै ना पाए धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा किरपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा गुणवंती सलाहया सदा थिर निश्चल हर पूरा श्लोक महला तीजा त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे दुख हों मैं पाप कमाए मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत कोई सुख ना पावे है अंत गए पछुताए गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस हऊ मैं विचों जाए नानक जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुर चरनी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाम शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव ओए धर्म रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुआव नानक करता बंत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप हर नाउ पौड़ी बिन बूझे वड्डा फेर पया फिर आवै जाई सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदै लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना किसनो पूजे सब कोई सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर सीतल शांत वसै जप हिरदै सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाए।

को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मरमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजै,

गुर कै शब्द पर जालीऐ तां एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा तां परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे तां गुर मिलै अस्थिर रह समाई।

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

गुरमुख बूझै कोई। वाहु वाहु बाणी सच है सच मिलावा हुई। नानक वाहु वाहु करतिया प्रभ पाया कर्म प्राप्त हुए। महला तीजा वाहु वाहु करती रसना शब्द सुहाई। पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाहु वाहु मुंह कढ़ाई।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय चिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुड़ बरस है काहे। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा।

जन नानक नाम त्याई तू सब किल विख काट सुद राग गुजरी वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद स्लोक महला पंजवा।

प्रभ जिस नानक मस्तक भाग पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ पर्वत गारदा जिसनु करे रहम तिस ना वसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मत वन्य मित्र असा डड़े से हाँ टुने दी जाग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन।

संग जिन संग जपिए नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

आप दयाधारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए पीवत अम

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो अकाश पंखी अलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरी अठ अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम मत बीसरै रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै

जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार रहाओ, लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी हर गुण गावे हम तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति, ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पात।

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ अनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यों प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

महासुख पायु चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान।

हां किल बिख कोट दोख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ। खोजत खोजत खोज बीचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते

देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अन ग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगाद्यो देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

अपनै ही पुरजायो इतनी ना बूझै कबहु चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुनै मन सुख कर मानै बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

मान त्याग हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विख नास हैं

जाको उपजी छोड़ न कतुहू जाता रहा बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मजन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइया संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइया देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया आप दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उदार।

काल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंदेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

जब कितवो तब तुहारी उन समार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोहे दीजै कर संतन का चेरा रहा प्रातः काल लागू जन चरनी निस बासुर दर्श पावो तन मन अर्प करूं जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लहिए राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाई सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहा मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणी।

दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पुत्र, तास ग्रास उचारियो। नानक उठ गई जगदीश, पुनः पुनः बलिहारियो।

रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई। रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संयम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान,

अंतराय बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अरसादक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे, काकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर भर मंदर राखियो, जो पैसा कालू कीरे, दूरों ही ते भाग गयो है, जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे, मांगो दान कृपाल कृपा।

साध पगा हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

कोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंध है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर सरनागती मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विट्टो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के

अब बिहागड़ा मोहल्ला चौथा जिन हर हर नाम ना चेतेओ मेरी जिंदड़िए ते मन मुख मूड आने राम जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए ते अंत गए पछताने राम हर दरगाह ढोई ना लहन मेरी जिंदड़िए जो मन मुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरमिल उभरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए।

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन दुष्ट।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे।

सहस सियाणप नह मिलह मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम छका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

ढावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा दह दिस खोजत हम फेरे मेरे लाल जियो हर पाए अड़ा घर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस मैं रहया समाए राम सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाथा हमें हर रस चोया।

दाते नित देहें चढ़ सो आया रिद्ध सिद्ध नव निद हर जप जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजालीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम।

चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाइए प्रभ त्याइए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, हर पतन तन एहो मना, बड़ पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागनी सब रंग माणी, रांड ना बैसे ही प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उधार नू, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तार नू, जो सरन आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत ना

गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारू सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइय पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कह

पंजवा खोजत संत फिर है प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलहु प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिए देह नाम अपना जपूं स्वामी हर दर्स पेखे दीजिए समरथ पूर्ण सदा निश्चल ऊच अगम अपारे।

0: तपतमा कतह बुझ बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्राट कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। हमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मन हुना बीसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

कल्याण मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने काम पुत्र कलतरना संग शोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई, हों हों करतना त्रिशन बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी, बिनवंत नानक बिन नाम हर के कीत्या पछताने, तार अनग्रहो अपना कर ली नाराम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे से चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण पर बीना।

आय गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुखदाता सबना गल्लां का तिसनो त्याए दिया केव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िए हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे डिठे जगत तरिया सब लोड़िए। श्लोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाव वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

आवत जात न दिसही, ना पर पंखी ताहे, बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहे निर्वाण। हर रस फल राते नानका, कर्म सच्चा निशान पौड़ी, आपे धरती आपे है राहत, आप जमाए पिसावे, आप पकावे, आप भांडे दे परोसे, आपे ही बह खावे, आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुड़ी परावे, आपे संगत सद बहाले, आपे विदा करावे, जिसनु कृपाल हुए हरे आपे, तिसनु हुक्म मनावे। श्लोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुन संबंध, ममता मोह सो बंधना, पुत्र कलत्र सो तंद, जह देखा तह जेवरी, माया का संबंध।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाय। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक सरन करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

जगत उपाया करते दान सबना कौ दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सो थिया। श्लोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवह सद साचा अनदिन सहज प्यार सदा आनंद गावह गुण साचे अर्ध उर्ध उर्तार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर।

0: मन रह सदा गुण गाय, बिन कर्म किने ना पायु,
1: भौक मोए बिल लाय।
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आई।

आपे खांडवर भांड करे, आप समुंदे आप है सागर, आपे ही विच रतन धरे, आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे भौजल आप है बोहिथा, आपे खेवट आप तरे, आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाइए, अचिंत वस्य मन आए, जन्म मरण दुख कटिए, हों मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाइए, सच्चे रह समाए, नानक पूर्व जिन को लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा। नाम रत्ता सतगुरु है, कल युग बोहित होए, गुरमुख होवै सो पार पवै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए, नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया,

पर बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लब की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइए नानका, थादे जाहे विकार, मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पी लाए जमकाल, हित मद पीते नानका, बहुते खटिय है बेकार, ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार, काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कट है बेकार, पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप अपदेसै।

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई। फिर पाया घर आए पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अभुल ना भुलै कब ही।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सत जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तैं सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगै गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

पड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

गुआई। देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहे आसमाई। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाई।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुआर, नानक से बड़भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन वसाया।

मैं अवगण भरपूर शरीरे हों क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया हे मैं गुण नाही हों क्यों मिला मेरी माया। हों कर कर थाका अपाव बहतेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडा।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हों क्या करी दोहागण नित

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेश करी पिर कारण जे हर प्रभ साचे पावा।

पानी धोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सत गुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर

आप वखाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाउ लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडांस महल।

सो जानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अबनासी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

दाते, जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, वडहंस महला पंजवा, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, वडहंस महला पंजवा, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे,

कमाली जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तिस बिन रह ना सका, ज्यों चातरक जल को बिल लाता। हौ क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हौ भई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौ वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली।

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन सच शब्द विचारा अन दिन सच सलाहना धन पन वड भाग हमारा।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड़।

कब हो ना जावे। राजो ता तेरा सदा निहचल एहो कब हो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा हुआ एक तेरा नावे। जुगह जुगंतर भगत तुम्हारी

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम ध्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई।

पारा, खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगहा सुटियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मनमुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर, दुख खटे संसारा, खोटे खरे परखियन, तित सच्चै दरबारा राम, आप करे किस आखी है, और करना किछु ना जाई राम, जित भावै तित लाए सी, ज्यों तिस दी वडियाई राम, ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई, वरियाम न फुसी कोई, जगजीवन दाता कर्म विधाता, आपे बक्के सोई, गुर प्रसादी आप गवाई है, नानक नाम पत पाई, आप करे किसे आखी है, और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हूं मैं मैल परिजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया और मूरख कूक मुए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे भंडारा गुरमुख होवै सोई बूजै सच सवारन हारा आपे मेले सो हर मिलै होर कहना किछु ना जाई नानक बिन नावै परम भलाया

कै कोई जिन श्रेष्ठ साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द शांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई एहो जग जलता देख कै भज

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुखदाती देहो सतगुर चरण हम तूरा कोई आन मलावे मेरा।

सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाई लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर

आप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हूं मैं पापा जप हर हर जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरे मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देह तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देह सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एह देह सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी विखम भोए अंगा राम विखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कड़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम उपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा

हर मिले हर गुण सुख घने, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया।

मन मैगल गुर शब्द वस आया राम। मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती। कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती। हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है। वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम। मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा। हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली। हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाए। हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी। देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग वडहंस महला पंजवा। शंत घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमिल लद्दा जी राम प्यारा राम, एहो तन मन दितड़ा वारो वारा राम। तन मन दिता पवजल जिता, चूकी कान जमाणी। अस्थर थिया अमृत पिया, रहया आवन जानी। सो कर लता सहज समदा, हर का नाम अधारा। कहो

0: तुद सलाही।
1: गुण अवगण मेरा किस नाम बिचारिया,
0: बख्श लिया खिन माही। नौ निद पाई बजी वधाई, वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया। मेरे लाथे जी सगल वसूरे, सलोक क्या सुनेंदो कूड़, वंजन पवन चलारिया। नानक सुनियर ते परवान, जो सुनेंदे सच धनी चंत, तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम। से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम, से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए। पै बोहित सागर प्रभ चरणा, केते पार लंघाए। जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर, तिनका लेखा ना गणिया। कहो नानक तिन कोल कमाई, जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। सलोक लोइन लोई डिठ, प्यास ना बुझै मूह घणी। नानक से अखड़िया बेअन।

धान्य से परधान्य हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम जन चाख अगाणी।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो शरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

रेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल ना धोवे सुखनंतर संसारू ज्यो बाजीगर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

दाता शब्द रंग राती जोब नमाती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संतां जाए आप छोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया पर पूरे वेख हदूरे

शब्द जलाए, औगण शब्द जलाए, दूजा भाव गवाए, सच्चे ही सच राती, सच्चा शब्द सदा सुख पाया, हम मैं गई परांति, फिर निर्मायल सदा सुख दाता, नानक शब्द मलाए, फिर हम छुनिया भी मिल है, जे सतगुर लाग है साचे पाए।

समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप

पौड़ी, तू आपे ही आप आप है, आप कारण किया, तू आपे आप निरंकार है, को अवर नाम।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतम है जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो हो संतो हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेश।

काम क्रोध विनाश सतगुर का पहु छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय इस पेख थाम हो गिरहो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रते तिना सूजी पई दूजे भरम भुलाय पय किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योतिष भाव है।

ना हो गई अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े लै जासी पत गुआय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जितै हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत् ना खोई नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार एक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ है जिन्ना दूजे भाई प्यार।

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेवी है शब्द वसै मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे।

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अणहुंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर, नानक किसनो आखी है, जां आपे बख्शन हार पौड़ी, तू कर

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायत रूप है बिन नावे नक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चे सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाहे। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हों मैं शब्द जलाए कूड़े की पाल विच्चों निकले सच वसै मन आए। अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर

सखाई मित्र हमारा, हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलत, हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कहो हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। श्लोक महला तीजा, जिन कहो सतगुर भेटिया।

तिनको संतुष्ट भया जो गुर चरणी जन पाए। जन नानक हर का दास है कर कृपा हर लाज रखाए। महला तीजा हो मैं अंदर खड़क है खड़के खड़क विहाय। हो मैं वड्डा रोग है मर जमे आवे जाय। जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आय। नानक गुर प्रसादी उभरी हो मैं शब्द जलाए पौड़ी। हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर अविनाशी पुरख विधाता। हर नाम हम सिरेव है हर नाम हम पूज्य है हर नामे ही मन राता। हर नामे जेवड़ कोई अवरना सूजे हर नामो अंत छाता। हर नाम दिया गुर पर उपकारी धन धन गुरु का पिता माता।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवै होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

हर का नाम गुरमुख किने विरले त्याया जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा जगत अज्ञानी अंध है दूजे भाई कर्म कमाए दूजे भाई जेते कर्म करे दुख लगे तन धाए गुर प्रसादी सुख उपजे जा गुर का शब्द कमाए सच्ची बाणी कर्म करे अन दिन नाम त्याए नानक जित आपे लाए तित लगे कहना किसु ना जाए। महला तीजा हम घर नाम खजाना सदा है भगत भरे भंडारा सतगुर दाता जी का सद जीवै देवनहारा अन दिन कीर्तन सदा करह गुर कै शब्द अपारा शब्द गुरु का सद उच्चरह जुग जुग वरतावनहारा इहो मनुआ सदा सुख वसै सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हर रतन है मुक्त करावनहारा नानक जिसनो नदर करे सो पाए तो होवै दर सचियारा पौड़ी तन तन सो गुर सिख कही है जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुर सिख कही है जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुर सिख कही है जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया तन तन सो गुर सिख कही है जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी जो गुर कै पाणे गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा मन हथ किने ना पायो सब थके कर्म कमाए मन हठ भेख कर भरम दे दुख

0: मिटै, मन हर सरनी पढ़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल न सकै,
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां, सदा सदा हर नाम ते आई है।

सोथिया रन के रुन्नै होए धरती उपर कोट गाड़ केती गई बजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नखा पाए।

गुण होन ता कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कड होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगन वन सोठ महला पहला चौतुके माए बाप को बेटा नीका ससुरै चतर जुआई बालक।

करता हितकारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं बेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसर सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाइए।

हाव जागत रहे तिनी प्रभ पाया शब्दे हम मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बीचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एह मनुआ दह दिस धाम दा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर

कर कर विगुते केहो चलै ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुरु ज्ञान सदा घट चानन अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती राम नाम सच लाहा नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा सूरत महला तीजा दासन दास हुवै तां हर पाई विचों आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है आन दिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सियों रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपने दासा नू किरपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भव भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यू।

पाया, पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, ओ पाए गुर विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा, नानक नाम रता इक रंगी, शब्द सवारन हारा, सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारिया साध ही, तेरे नाम विटो बल जाय रहाओ, हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता, हर सिउ रहे आसमाई, शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी, मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मिटै भाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई, अवर ना दूजा कोई।

आप राखे जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे। सदा लिब है तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे। ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया। हरनाक्ष नख है बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावे। हर जियो लय उबारी, आपस कहो

पछताए। सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अनदिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवे, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारो वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोय ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाणे। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईए, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईए, नानक नाम वसे मन अंतर। विचों आप गवाईए, सोठ महला तीजा चौथुके। सच

हृदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा, सदा हजूर रविया सब ठाई। हृदय नाम अपारा, जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा, सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया, हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया, कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया, राम नाम की गत कोई ना बूझे,

नानक नाम समाल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाए मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई अल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईऐ पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

वावह हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे घर अंदर सच पाए सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज सुमानी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल होआ गिल बिख काटन हारा शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दात दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या।

आपे पत्तल पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर खेवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए, आपे सूत आपे बहुमणिया।

सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाउ, आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सब नारिजक समाह दा प्यारा।

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाऊ आपे धरती।

आपे अतुलत लाएंदा प्यारा जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाएंदा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी, जप नानक भगत समाहा। सोठ महला चौथा दुतुके, अनक जन्म विछड़े दुख पाया। मन मुख कर्म करे अहंकारी, साधु पर सत ही प्रभ पाया। गोविंद शरण तमारी, गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी। जब सत संग भए साधु जन, हिरदय मिलया शांत मरारी। रहाओ तू हिरदय गुपत, वस है दिन राती। तेरा भाव ना बुझ गवारी, सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटिया। गुण गावे गुण विचारी, गुरमुख प्रगास भया शांत आई। दुर्मत बुद्ध निवारी, आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया। सत संगत पुरख तुमारी, पुरख है पुरख मिलया गुर पाया। जिनको कृपा भई तुमारी, नानक अतुल सहज सुख पाया। अन दिन जागत रह बनवारी, सोरठ महला चौथा। हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया,

कृपा जल देव हो हर नाय। हो अंतर नाम मंगा दिन राती, नामे ही शांत पाई रहाओ। ज्यों चातरक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास ना जाई। गुरमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया भाए सुभाई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़े आई, गुरमत राम नाम प्रगास्त हो।

कृपाल हुआ प्रभ मेरा, थे लागे गुर की बाणी, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला, राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला, सूरठ महला पंजवां घर पहला, चौतुके गुरु गोविंद सलाहिया पाई, मन तन हिरदय तार, साचा साहिब मन वसै भाई, एहा करनी सार, जित तन नाम ना उपजै भाई, से तन होए शार, साध संगत को वारिया पाई, जिन एकंकार आधार, सोई सच आराधना पाई, जिसके सब किश होए, गुरपूरै जानाया पाई, किस बिन अवर ना कोए, रहाव नाम मिहूने पच मोए पाई, गणत ना जाए गणी, बिन सच सोच ना पाई पाई, साचा अगम धनी, आवन जान ना चुकई पाई, झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधारदा पाई, दे नावे एक कणी, सिमरत सात सोधिया पाई, बिन सतगुर भरम ना जाए, अनक कर्म कर थाकिया पाई, फिर बंधन पाई, चारे कुंडा सोधिया पाई, बिन सतगुर नाही जाए, वडभागी गुर पाया पाई, हर हर नाम त्याय, सच सदा है निर्मला पाई, निर्मल साची सोए, नदर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाई है पाई, बिरला कोई कोय, नानक रत्ता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए, सूरत महला पंजवा दो तुके, जौ लो पाओ अपाओ इह मानै, तौ लो मिलन दुराई, आन अपना

तरी पड़या तां कहो सर्व परगासा अज्ञान अंधेर है सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक इहो सुख मांगे गह कीर्तन तेरा साधु गावे तह मेरा मन लागे सोठ महला पंजवा तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्व कुशल तब किया संतन बिन अवर न दाता दिया जो जो शरण परै साधु की सो पार ग्रामी किया रहाऊ कोट पराध मिट है जन सेवा हर कीर्तन रस गाई इहां सुख आगे मुख उजल जन का संग वडभागी पाई रसना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ पराधी ओट संतन की आही बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप में

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निदान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जाको तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, तां को मन ते बिसर ना जाई। सोट महला पंजवां, सगल समग्री।

साध शर्म छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो परम पलावा कहियत, तिन मह उर्जियो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बात, एहो खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाउ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना करत उदारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिय, एहो पूरन तत बिचारा, सोठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारेउ, राम नाम तत सारा, किल बिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी रहाउ, मुकत भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता, सर्वणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई, करण कारण समर्थ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई, वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्ब वेला मुख पावो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो।

सरण परिजय करै सो भला मनाइय सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइय भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपनी मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंधिसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर बिसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भय मगन चरनारा सोठ महला पंजवां राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाउ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरन सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवां हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे
तू सर्व कला का ज्ञाता माधु हमें।

मांगन कौ सगली दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

अब कहाँ करे तू, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद पै सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिस्मादी।

है सुख नहीं पाईए। हो होरेन तू सगल की मेरे मन तव आनंद मंगल सुख पाईए। काल ना भाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

आंद मंगल बिसरामा मन बाचत फल मिले अचिंता पूर्ण हो ए कामा इहा सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ पए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम।

आव हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन कराव नहार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह माने गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया

थीवे विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हौ मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे आसमाहेउ पूर्ण पूर रहेउ सर्ब मह जल थल रमैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर भरम चकायउ सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे आसमायउ सूरठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडाव हो एह पीतर ते इनको डार हो आपन निकट बलाव हो अपनी बिद आप जनाव हो

गुरपूरा भेतियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरत महला पंजवां जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार समालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवां अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिनकी धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरठ महला पंजवां जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहारै।

औखद मुख देवे काटे जम की फंदा रहाउ। सम्राट पुरख पूर्ण बेधाते आपे करने हारा, अपना दास हर आप उभारिया। नानक नाम अधारा चौठ महला पंजवा, अंतर की गत तुम ही जानी। तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो।

काट सिलक कीनो अपनो दासरो तौ नानक कहा निहोरो चौठ महला पंजवा पये कृपाल गुरु गोविंदा सगल मनोरथ पाए अस्थिर पये लाग हर चरणी गोविंद के गुण गाए फलो समूरत पूरा शांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निदान नानक जन पाया तगली इच्छ पुजाई चौठ महला पंजवा गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखन प्रभ कीने।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौरठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

आसन जास गाय, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण वसाई, सुख पाया सहज धुन उपजी, रोगां घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आख बखाणा, कीमत कहण ना जाई, नानक भगत पए अबनासी, अपना प्रभ भया सहाई।

ताप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, आनंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पय दयाला, जय जयकार पय जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जनते आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उरतार सदा सदा प्रभ सिमरिया भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोई करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संतो हो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ अन दिन नानक नाम त्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै ज्यों बारिक पित माता सूरत महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद भेटे।

सोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पा।

जी जंत सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया सोरठ महला पंजवां साहेब गुनी गहेरा घर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पए दयाला जापे।

हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ। हर चरण की ओत सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया। हर रसक रसक

पार ब्रह्म निभाई पूरी, काई बात न रही आयूरी। गुर चरण लाए निस्तारी, हर हर नाम समारी। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यों पाला रहाओ, वडभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मटाया,

साधा की तूरी नावे, अपना नाम आपे दिया, प्रभ करन हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा, एहो पूर्ण बिमल बिचारा, कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी, सोठ महला पंजवा, गुरपुरै चरणी लाया, हर

पूरी हेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म बितो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीव परमानंदा जन नानक नाम त्याया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस शतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो।

सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चर के पंथ निहारों नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

स्तुति हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किश

प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां तूली।

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां।

मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाउ। नानक प्रभु अविनाशी ताकी सेवना बिरथी जासी।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

हर हर हर अरादु हर अराद सबू किश पाईए कारज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो हो सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

होता। जो सिवरै किसकी गत हुवै, उदरह सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। चौठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी। बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया। थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती। गुरपूरै कृपा कर दीनी, बिरलै किन्ही जाती रहाउ। गुरबाणी गावह भाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम त्याया, पूर्व लिखिया पाया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरा आराधे। कार्ज सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे। बाजे अनहद तूरे, संत हो राम जपत सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाउ। गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी। नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे। त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाई है। जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाउ। ज्यों कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रव सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रव सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाइए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही रहाओ। दारा मीत पूत रथ संपत, धन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो, भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जोग हारियो,

बिखियन को धावत केहे बिदरू कौ ताहि रहाउ वेद प्राण सिमरत के मत सुन निमख नाही ए बसावै पर धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कश ज्ञाना घट ही भीतर बस्त निरंजन ता को मर्म ना जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जब की फांसी सोरठ महला नवा रे नार यह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के उर्जे हो कहां गवार अज

पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निरतन देखो नरको संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनसो ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै भंजन जस ता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो।

आसा मनसा सगल त्यागै जागते रहे निरासा। काम क्रोध जे परसै नाहन तेहे घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेहे नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी। नानक ली

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नाम मस्त कलेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मान मुख झूठ लह पै मान आपे ज्ञान अगाम जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिए भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर

प्यारे अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नजर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिय प्यारे कंदी पाए कहां रहाओ सालाही सालाहना प्यारे दूजा अवर ना कोई मेरे प्रभ सलाहन से भले प्यारे शब्द रते रंग होए किसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत परवाना साच का प्यारी नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारी हुक्मी हुक्म पछाण गुर बिन हुक्म ना बूझी है प्यारे साचे साचा तान हुक्मै अंदर निम्या प्यारी हुक्मै उधर मजार हुक्मै अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै भार।

जाय। हुक्मे शब्द पछाणी है प्यारी, दरगहा पैंदा जाय। हुक्मे गणत गणाई है प्यारी, हुक्मे हों मैं दोई। हुक्मे पवै पवाई है प्यारी, अवगण मुठ्ठी रोई। हुक्म सियापै साहा का प्यारी, सच मिले वडियाई होय। आखण औखा आखी है प्यारी, क्यों सुनिए सच नाओ। जिन्नी सो सलाह आ प्यारी, हों तिन बलिहारै जाओ। नाओ मिले संतोखियां प्यारी,

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

मन वस्या नामे ही मुक्त पाई। रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई। मन मुखा नो प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुआव। गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ। भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

गुर कै शब्द पछाता अचिंत काम करह प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा ऊना की रीस करे सोग गुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन हर

भाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुह देसी जाय किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई नाम संभाल है सुख वसह भाई सदा सुख।

पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविय पाई ब्रह्म पौ हो ऐ नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै परगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िया पाई होइया सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिया चूर करन करावन समरथ हो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावे ता मेल ले पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवे परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई।

जिस पर तीत ना आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसकै बल जाओ। ओ निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा भेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काढ बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पोंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बादे।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विध दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिय हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंड होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया, नह मिलिय एह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए पी कर कर रहे आ, वड़ी आर जा फिर जन्मे, हर सिंह संग ना गए आ, राज लीला राजन की रचना, करिया हुक्म अखारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक कोर

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

हर नाम ठंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हों गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हों मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर।

हरि अपना सोजन होवै परवान। गुरमुख मोए जीवन दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे। नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है। सत संगत साधु लग

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा से सहन से सजना, जे गुरमुख मिल है सुपाई, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाई। दूजे पाए लगे सजन ना आखिए, जे अभमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी, कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगते अपारिक, आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हों मैं लेखा मंगी, फिर आवे जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया। बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया, जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा, घर ही मह अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। अमृत तज बिक संग्रह करतै आप खवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया।

फिर का जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सोहर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइय। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइय। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइय। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइय। गुर पूरै वेखा लिया गुर सेवा पाइय। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िय। रतना पूरी दे जियो वंज चौखनी। सच्चे संदड़ै ने नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिष्ट सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आय। नानक जो गुर सेव है अपना, फौतिन बलिहार जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाय। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याय। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अट अट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमें परम पलाय। गुर प्रसादी भउ पया, बडभाग वस्या मन आय। पै पय मन वस हुआ, हमें शब्द जलाय। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाय। सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाय पौड़ी।

ना छोड़ई, दुख ही मह दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले, शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा, जो सतगुर ते मोह फिरे, तिन्ना ठौर ना ठाउ, ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे, दुह चारन बदनाउ। नानक गुरमुख बख्शी है, जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी, जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया, जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया, से दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया, हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया, गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा, थाले विच तै वस्तु पयो, हर भोजन अमृत सार, जित खादै मन तृप्ति है, पाइए मोख द्वार, एहो भोजन अलभ है संतो, लभै गुर विचार, ए मदावनी क्यों विचों कढ़िए, सदा रखिए उर धार, ए मदावनी सतगुरु पाई, गुरसिखा लदी पाल, नानक जिस बुझाए सो बुझसी, हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा, जो तुर मेले से मिल रही, सतगुर स्यों चित लाए, आप विछोड़न से बिछड़े, दूजे पाए खवाए, नानक बिन कर्मा क्या पाई है, पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी, बह सखियां जस गाव है, गावन हारियां, हर नाम सलाहे हो नित, हर को बल

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विस्ता काग खावई जिस हर होए कृपाल सो नाम ते आवई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगै टै पौ सब किश जाने।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवै हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भउ करे।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मेता तिस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोहे द्वार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चै शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाहे प्यार नानक नाम रते सहजे रजे

आई नानक गुरमुख मिला बड़े आईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी।

चेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारी है फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूका आवन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चित हर नाम सिउ अंत होए सखाई। जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी तां गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है जो नाम हर राती। तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है जो बोले है हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है से

पिछै सुख नहीं, मर जम्मै वार वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चित एक अरादिया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कुमहल ना जाननी, मूर्ख अपना

आईंदे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग सियो सब किल विख क्रिखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर धरे विखा। सलोक महला तीजा गुर बिन ज्ञान ना होवई।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हो बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुध साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जपदे हर हर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है। सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई भाम दी। जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा। हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है। हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिलै ता पूरा पाई है। हर रस रसन रसाई। पौड़ी रैन दिन सप्रभात।

जाए। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नहाया।

तेन निज कर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रप, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत

हेरा चौदिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गाडले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए।

परत है या तन की यह बड़ाई काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस जोर जोर धन किया मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया देहरी लो बरी नार संग पई आगे सजन सोहेला मरखट लो सब लोग कटंब भयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नरनी भ्रम सुआ वेद प्राण सबै मत सुनकै करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निरासा मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना।

जाई। हमरा धर्म गया पौ भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाऊ बाजीगर डंक बजाई।

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर मई है।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जेह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेतत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतीजे ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ बहा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

तहि अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत सुमानी मैं गुरु प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया, गुर चेले है मन मानिया, जन नामे तत पछानिया, राग सोरठ वाणी भगत रवदास।

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज कोई अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक है स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रवदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिक राजे इंद्र समसर ग्रह आसन।

पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रवदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत पुन बड़े भाग लिव लागी कह रवदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पए है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

राखै जां सोए। जह देखां तह रहे आसमाय, तुद बिन दूजी नाहीं जाय। जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुण उठ चल।

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाई, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिंह चित लागे फिर का न खाई रहाओ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिखिया।

काती कूड बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी को जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का तप था नष्ट जग प्रिष्ट होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आठ सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोर।

सुख मानी अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो भाई दुबदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाय गुर प्रसाद वसै मन आय सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिलै मन मानिया तनासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अत अपारा गुर कै शब्द भरे भंडारा नाम तन बिन होर सब बिख जान माया मोहे जलै अभमान गुरमुख हर रस चाखै कोई।

बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रखे सुख सहज समाई।

कूड़ को सत तृष्णा यज्ञ बुझाई, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए।

जन कोई, अचार चले ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवार, हों मैं विच हो तजै विकार, जो तुर रखियन।

मूर्ख गावार मनमुख भूले अंध गावार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत साची बाणी।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन देहु अपना ऐसी बख्श करी जय भणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उड़तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर

निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारी गत मित कह ना सक है प्रभ हम क्यों कर मिल है अभागी हर प्रभ स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की धूर मंग है प्रभ स्वामी।

चल जानी। हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी। हर हर अमृत पी त्रिपतासे, सब लाती भूख भुखानी। जिनके वड्डे भाग वाड़ी विचे, तिन हर जपे हो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तना श्री महल

अपन पाली गुर सिख मीत चलो हो गुर चाली जो गुर कह सोई भल मानू हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवे हो बेग बिगाली।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पग राली तनासरी महा।

करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो हो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपो तरह तराकी हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे।

समझ कीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोलह मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

सद बलिहारे जाओ रहाओ सरनागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे है सब गावे है हर हर उत्तम बाणी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाउ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभु चोज वडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिनसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तीना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकी तेरी कुदरत कौन विचारे जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करह सगल जन तेरे तू अबनासी पुरख मरारे ज्यों पावे त्यों राख स्वामी जन नानक सरन द्वारे तनासरी महला पंजवां दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई परा।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल कर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा।

ਪਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹੇ ਓਲਾ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪੂਜਨ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ

आनंद राज पाई मुक्ति निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गा।

ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुमरे तारे

अल्प मत थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखाव हो, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले।

निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी महल।

टेकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागू राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाई दिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर बिरता सगल मिटाई।

कर बंधन काट ले हो अपने कर कभू न आवह हार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आराधी नानक सद कुर्बान राग तना श्री महा

काल आन संयम किसना सूजै एह जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोय वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाई साध संगत बिन सजाए अंदा।

पंजवा फिरत फिरत भेटे चल साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

साध की शोभा आत्म चकीनी, संत वडाई हर जस कीनी, आनंद संतन कै भगत गोविंद, सुख संतन कै बिनसी चिंद, जह साध संतन होवै एकत्र, तह हर जस गावह नाद कवित, साध सभा मह आनंद विश्राम, उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

रास, मिल साध संगत होवत परगास। जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटह।

गहू पार ब्रह्म सरन, हृदय कमल चरण, अवर आस कस पटल ना कीजै, सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा कीजै। तनासरी महला।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पव जल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारे साध संग जपन संग मन निदान तारे चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का,

कर आई। संत अनुग्रह भये मन निर्मल, नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस ताकै। जाका सतगुर पूरा, ठाकुर गाइय।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਨੁੱਖ ਡਹਕਾਵੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मह धर्मा।

जिस जन कै पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत पय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे।

मिलै नानक संत सेवा तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवां छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहु जात सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को भई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवां पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरथारी जैसे कागज के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख

मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिस कै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। थनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ। जह जह देखो तह तह स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करनहार रखवाला होआ जा कांत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवां घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा करता रहो पुजा गह कूप ते काड लेव हो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवां हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ। राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह। सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्वत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ। बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए।

आनंद हरदे वनहारा चरण कमल स्यों लागो नेहो नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नवा काहे रे बन खोजन जाई सर्वनवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ पोह पमद ज्यो बास बस्त है मुकर माहे जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई बाहर भीतरे को जानो एह गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीन मिटै ना भ्रम की काई तनासरी महला नौवां साधो एहो जग भरम भलाना राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ मात पिता भाई सुत बनता तां कै रस लपटाना जोबन धन प्रभता कै मद में अहनस रह देवाना दीन दयाल सदा दुख भंजन तां स्यो मन ना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना तनासरी महला नौवा तेह जोगी को जुगत ना जानो लोभ मोह माया ममता फुन जेह घट माहे पछानो रहाओ पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन लोह समानो हरख सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिस को तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक एह बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो तनासरी महला नौवां अब मैं कौन उपाऊ करूं जेह बिद मन को संसा चूकै पहु निध पार परो रहाओ जन्म पाए कछ पलो ना कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच धरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पास ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरत पछानो तब हो पतत तरो तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आमन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर कथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे

आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हो मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो

दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाईए, बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे, कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनु

ना बहु भीख है काढ़ पांडे जिन अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पहु भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बन वासा परमत डोलत भये उदासा।

साखी है सचगुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा कूच करह आवह बेखला दे शब्द सच्चै गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

लेख है आपे सुरत बुझाय नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाय तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह बाद वधंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापे साचा सिर जनहारा भगत सोह है दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसल रसाया।

मन भाणे, अमरा पद पाया आप गवाया, बिरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहन दर साचे, साचे के वापारी, भूख प्यासो आत, क्यों दर जाए साजियो, सतगुर पूछो जाए, नाम त्याए साजियो, सच नाम त्याई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन, अन दिन नाम बखाणा, करनी कार तुरों फरमाई, आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, कृष्णा नाम निवारी, तनासरी संत महला पहला, फिर संग मूठड़िए, खबर ना पाया जीओ, मस्तक लिखियड़ा लेख, पुरब कमाया जीओ, लेख ना मिटई पुरब कमाया, क्या जाना क्या हुस्ती, गुणी अचार नहीं रंग राते, अवगुण बह बह रोसी, तन जोबने आक की छाया, गिरध भय दिन पुनिया, नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुनिया, बूढ़ी घर गालियो, गुर कै भाए चलो, साचा नाम त्याए पावह सुख महलो, हर नाम त्याए तां सुख पाए, पेई अड़ै दिन चारे, निज कर जाए बह सच पाए, अन बिन नाल प्यारे, बिन भगती घर वासना होवी, सुनियो लोक सबाए, नानक सरसी तां पिर पाए, राती साचै नाए, फिर तन भावै तां पिर भावै नारी जीओ, रंग प्रीतम राती, गुर कै शब्द विचारी जीओ, गुर शब्द विचारी नाह प्यारी, निव निव भगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम, रस मह रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेते, लाल भई मन मारी, नानक साच वसी सुहागण, फिर सिहो प्रीत प्यारी, फिर कर सोहै नार, जे पिर भावे जियो, झूठै वैण चवे।

लगातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीचे अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोलय जियो नित जपह तेरे दास पुरख अतोलय जियो संत रसन बूठा आप तूठा हर रसै सेई मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाऊ हनुमान सर गरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घड़िया आप कटे तन सीजै काल अहेरी फिरे बदक ज्यो कहो कवन बिध कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है काका रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना

पूछे तप कर बहुर ऐबू, या मांगू किस थिर नाही। राम नाम रख मन माही रहाउ, सोभा राज बिभै बढ़ियाई। अंत न काहू संग सहाय, पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया। इन्ते कहो कमने सुख पाया, कहत कबीर अवर नहीं कामा। हमरे मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई। अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने, तेहू पुत्र पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई। ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम ले ही, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर सने। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाई। मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रिण धर मूंड बलाई। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो। बिन सजाए झूठी देही रहाओ, मेरी मेरी कैरो करते। दुर्योधन से पाई बारह योजन, शत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन मैं पई पराई। दुर्बासा से

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नामो, सत्तर दोहे परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहे तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निसनाद बाल।

आउ ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे पवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती लाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा, धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा, मेरा माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण सरन नामा बल तिहारी, तनासरी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, हो बल बल जाऊ रमैया कारने, कारण कमने अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, यो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो, मन सो मधुकर करो, चरण हृदय धरो, हरसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटे, मैं तो मूल महंगी लई जी सटे रहाओ, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हर सिंह, पैज राखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पास।

लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पण नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठसठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान री कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान री कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बसाल आण तुखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाऊ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाऊ उत्तम दिया रा निर्मल बाती।

सतगुरु हुए लखावे धन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

लायो गुर साधु गुर मिलिया हीर पराखा रहाउ। मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा। हर हर साध मेलो जन नीके

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा धार दी।

गुर साधु मिल साधु कपट खला न रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन अम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिस हर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सत

आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथ तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिल हो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जप हो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

था मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधुसूदन

अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

मुखी उज्जल संग संतन कह पाई जैत श्री महला पंजवां कर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

कहाउ को कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो वर्ण ना दिसै चिन्ह ना लखिए सुहागन सांत बुझहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवा धीरों सुन धीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरों पेख प्रभ को नीरो बेशुमार बेअंत बड़ दाता मने गहीरों पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरों जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो माया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई जिनकै संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवां गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाउ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन।

प्यारस मह मगन होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चात्रक चितवत बरसत में किरपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारी जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भज

जमको त्रास भयो उर अंतर सरन गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुगद लोभी फुन करत पाप अबहारा

दह दिस को उठताया घट ही पीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया नाहिन गुण नाहिन काश जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार परियो शरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत श्री महला।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो।

दिखा बुजंतिया यारवे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यारवे हिक दू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेर आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन का कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोए, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पज सरन स्वामी सुखगामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नान

दे मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कशु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक भरम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़ साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं, नानक हर रंग राच पौड़ी, हर एक निरंजन गाई है।

थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़ै थाए। नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत रियासा पूर है। खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाई नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमहु, बिनसे सब रोग सलोक, कुटुंब जतन करनं, माया अनेक उदम है, हर

साक्षात हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदर प्रभ हुए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोका बसंत स्वर्ग लोक है जित ते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया।

लंदड़ी परवान जितम लंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

ओट नानक परमेश्वर है, चंदन चांदना सरद रुत, मूल न मिटे काम, शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम पौड़ी, चरण कमल की ओट उदरे सगल जन।

पाईऐ वड्डै पुन्न। आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक, दया करनं दुख हरनं उचरनं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप। जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी, जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया। कोट अगा गए नास हर एक त्याया, निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया। मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया, तरे कुटंब संग लोग कुल सुबाया। सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर, गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर। गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह, गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम। सतगुर चरणी लगिया पौड़ी, धन धन गुर देव जिस संग हर जपे। गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे, पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे। काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे, गुण गाए बेअंत रसना हर जसे। सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको, वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत। नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला, हर इकस पह अरदास। नाम वखर धन संचिया

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवां हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तोहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना

प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछै परयो, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभु संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी।

सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहूं ते छूटै पवजल जगत तरायण खोजत खोजत

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही, राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन पीतर, अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक, सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी, ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत, थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे, खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे, वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही।

जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

तरिया टोडी महल्ला पंजवां हमारे एकै हरी हरी आन अवर सिंहान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमोह को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नीमा हर हर त्याई कुशल सब खीमा।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो

आयोरे महाराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ियो ने भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरे ही अरै दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गहयो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हर खे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक

धर्म जप एहि राम नाम निर्मल है रीत रहाउ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तुसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमक ही रेते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खूब हो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट धारु प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीयन के दाते सदा सदा

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पय

जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राते जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीथे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपूरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काड लियो जन अपना, बिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही।

कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी। टूडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किसी

हरि आपी पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदा।

खुदर मंजारा, सोवे साहर सेव हो मेरे मन, हरियंत छावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर, तिस जन को करहो नमस्कारा।

हर हर नाम नित त्याई, जो इच्छा है सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए रहाऊ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाई। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिस

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्बे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहु तन माया पाहया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों

कामन नौ निध पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सपाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण कही ऐसा सियाणी।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

नानक कर्म प्राप्त होई, जिन जपया तिस कहो बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर। संत

सगले आपू तेरे जन देख दीदार दुनिया चीज फिलहाल सगले सच सुख तेरा नाम गुर मिल नानक बूझिया।

नाराविया साप छोरी तानी हाथ पछोड़े सिर तुने जब रहन विहानी पछो तावा ना मिले जब चूकेगी सारी ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी कंत

सुनाइया बलिहारी गुरु अपने गुर कौ बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्निया तिन

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

उस्तत है। जो हर प्रभ भावे जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाली। ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन को घुम जाया। वे आप छुटे परवार सिउ, सब जगत छडाया। गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर तनो। गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे।

नहीं जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निरभय पद पावे तलंग महला नौ जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जा स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दीखिया चल है सतगुर भाई पवै ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दरवाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै तां कै बोल साहिब नदर जिस।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस मान है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारी, सरनागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किल विक पंग, हर दीना दीन दयाल प्रभु,

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना हुई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुरा।

हर जपतिया उत्तम पदवी पाई। पुछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाई। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करी हर कीरत निमख एक गाय। पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पए पग आय। नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शीपा कह बलाय। खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोडे हर नाम दे लिया मुख लाय। जितने भगत हर सेवका मुख अठ सत तीरथ तिन तिलक कढ़ाय। जन नानक तिन को अन दिन परसे जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया।

हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे तिस हालत पर

जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई हर तन संकिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटिए होरत है होरत उपाय हर तन किते ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा इहो हर धन अग्नि तसक रह पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक वेख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहु हर आप है संतोह जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो परसन हुए, सो हर गुणा रवे, सो भगत सो परवान। तिसकी महिमा क्या वर्णी है, जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान। रहाउ सो सतगुरु, सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसके पाइए परम निदान। जो दूजे पाए साखत कामना, अर्थ दुर्गंध सरेम दे, सो

समान जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए है तेहा हों करी बखियान। सूही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई ज्यों

स्वामी मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर खाओ नाही जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे। मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै, हर की वडियाई देखो संतो। हर निमाणिया मान दिवाए, ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। सूही महला चौथा, तू करता सब किसे आपे जान है, क्या तुद पह आख सुनाई है, बुरा भला तुद सब किस सूझै, जेहा को करे तेहा को पाई। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किस सूझै, तुद भावै तिवै बला वह रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देवह, एक मनमुख धंध पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख। जेही तू नदर करह तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को भेख। तेरी बड़ियाई तू है जान है, सब तुदनो नित त्याई। जिस

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त पए जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पए गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हऊ मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हऊ मैं कार कमाई जिनकीए तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूझी पाई हऊ मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो नानक आपे वेख हर बिगसै।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ। इकना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करह से रोवे। हर की वडिआई हौं आख ना साका, हौं मूल।

सुप्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाईऐ, साच लगै ता हउमै जाईऐ। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभ सदा त्याए। सूही महला पंजवां, तन सुहागन जो प्रभु।

पंजवा ग्रहवास गुरु की ना हो घर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समगरी मैं घर की जोड़ी, आस पे आसी पिर को लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारी, सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी, रहाऊ सत शिंगार पहु अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया, कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे, गुण कामन कर कंत रिजाया, वस कर लीना गुर भरम चुकाया, सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई किन बिदही अरो धीरै निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले झागी, हिन रहन ना पावू बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत कर फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

माता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाउ दूजा सूही महला पंजवां बुरे काम को ऊठ खलोया।

सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाई जो हो रे ना जिस

अपार गिरामी गुरमिल नानक ठाकुर जाता जल फल मही अल पूर्ण बेदाता सूही महला पंजवां लालन रावे आ कमन गतीरी सखी बतावो मुझे मतीरी सुहब सुहब सुहवे अपने प्रीतम कै रंग रत्ती रहाओ पाव मनोवो संग नैन पतीरी जहां पठावो जाओ ततीरी जप तप संयम देओ जतीरी एक निमख मलावो मोहि प्राण पतीरी मान तान अम्बुद हतीरी सा नानक सुहाग वतीरी।

सूही महला पंजवां कट कट अंतर तुम्हें बसारी सगल समग्री सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन भ्रम भ्रम भ्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर।

मन माही जन्म जन्म के किन विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंध पपाई जत कत पेखो हर संग सहाई जत मेरी पत मेरी धन हर नाम सूख सहज आनंद विश्राम रहाव पार ब्रह्म जप पहर सलाह कोट आवद तिस बेदत नाही हर चरण सरन गर कोट हमारे काल कंटक जम तिस नाम बदारे नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मरारी सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा आनंद बनोद मंगल।

जित जित लाया तित तित को लागै, अगमे अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बुलाया तेरा। सुई महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवह मन के काम रहाव, प्रभ अविनाशी रहन दिन गाऊ, जीवत मरत निश्चल पावह थाउ, सो साहु सेव जित तोत ना आवै, खात खर्चत सुख आनंद विहावै।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता पाई है।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनेहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

सुखी ताकै पाछै जाऊ। छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊ। करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

नहीं आया, पुरुष है आया, कृपा आया, जो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाउ महादुत्तर माया, जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया। करो धर्म राया गृह अंध को पाया, पावक सगराया गही ओट सधाया। नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा कर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेना।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौं सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरह बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा। लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूट है, संतो हो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिये रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना, इस कान में है मैल प्रिये। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजे। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपे, उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ। कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुए, तिन हर सिउ आण मिलावे। माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे। जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक बरनऊ,

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भय कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म कर आया।

आऊ चरण धूड तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कौ बल जाई अमृत बचन हृदय उर धारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागै

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म ना।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई नाम है रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई

निंद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावै प्यारा तैरै वेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़ड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै, बक्षे बक्षण हार जियो, अनको की जय मितड़ा, खाक रल मर जाए जियो, बहु रंग देख पलाया,

सै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझे रजाए शब्द कमाई है।

तीजा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदले जन्म गवाया कीन सनाही आपै

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे बिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाई। मनमुख साही कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए।

की तृष्णा यज्ञ बुझाय। गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहिया समाय। हर का नाम सत कर जाने गुर कै।

जो मर खाक थी वाह मेरे साहिबा वाह गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ दुनिया केरी दोस्ते मनमुख दज मरन जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन तिस ना भूख ना उतरै अन दिन जलत फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप

नरके घोर पवन ए मन जैसा सेवह तैसा होवह तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किशु ना जाए महापुरखा का बोलना हुए कितै पर थाए कोई अमृत भरे भरपूर है ऊना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा अपदेसेन सेवड़ भागी जे ऊना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लय सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए।

साच रखा उर तार मिलिया हुए ना विछड़ गुर कै हेत प्यार फिर साला ही अपना गुर कै शब्द विचार मिल प्रीतम सुख पाया सोभावंती नार मनमुख मन न भिजई आत्मैले चित कठोर सप्पै दुध पी आई है अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिया आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरै ता सच बनया शिंगार सच्चा साहु सच्चे बन जारी उतै कूड़े ना टिकन उन्ना सच ना पावे दुख ही माही पचन हम मैला जग फिरै।

आगै धरी विचो आप गवाए खिंचो तान बगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहेरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल मिण नावै नाल ना चल सी।

खुट है गुरमुख निभ नाल ए मन मूलो भुलिया जस है पत गवाई एहो जगत मोहे दूजे व्यापिया गुरमति सच त्याई हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाय गुर कै शब्द मन तन रप

ई मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन ना निखुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर सिउ केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग मह विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटिया अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाउ गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होऐ लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहे समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देख।

तुझ अराधी दुख पी तुझ त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच

धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड है पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रह ता कोई किहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहो वरसे पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक काहुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना।

गुर सलाहिय उठदिया पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के धुआ पाऊ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

हूँ। मिथन मोहो अगन शोक सागर, कर कृपा उधर हर नागर। चरण कमल सरनाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण रहाओ। अनाथा नाथ भगत पै मेटन, साध संग जम दूत ना भेटन। जीवन रूप अनूप दयाल।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै। सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा। जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे। आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वरै। बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार। तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्वमय। तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी। भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा।

अब हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तौ असंख मन्यो हो आप बदानिया एक पूरी नदर निहाल देहे दर्श रंग मानिया जय जिथे मन धीरी है किल विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे हुए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तूही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाही अनेक मर मर जन्म ते बिन बूजे सब वाद जोनी भरम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हौ क्यों सहोरावन जाओ जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाओ जियो जिन्नी सखी सहोरावया ते अंबी छावड़ी एह जियो से गुण मान्य ना आमनी हौ कै जी दोस त्रेउ जियो क्या गुण तेरे विथरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो इकत ढोल ना अंबड़ा हौ सद कुरबान तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हौ एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरलिया बग बेहठे आए जियो सा धन चली सोहरै क्या मुह देसी अगे जाए जियो सुती सुती झाल पिया भुली वाकड़ी आस जियो तै सह नालो मुतीयस दुखा कू त्रियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागनी मैं दुहागण।

जियो तू सहु अगम अतोलवा कौ कह कह कह पयास जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख।

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कूडे वसा, मैं मार्ग देहो बता।

प्रसाद हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत तीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाए नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मीता हों बलिहारी साज ना मीता अवरीता गुणा का हुए वासला कड वास लीजै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै सांझ करीजै गुणह केरी छोड़ अवगण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए जिथे जाए बहिए भला कहिए झोल अमृत पीजै गुणा का हुए वासुला कड वास लीजै आप करे किस आखिए होर करे ना कोई आखण ता को जाइए जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कहिए आप करता क्यों भुलै सुने देखे बाज कहे दान अणमंगिया देवै दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई।

ता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले परपंच मोह बेकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया।

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसे भाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल्य, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटो हो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज हुए हर जन की, जो हर हर नाम त्याई,

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रव हो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अनदिन भगत करह गुर आगे, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल

जन निस्तरे घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दर

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा हो वह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

हर मन तनहु गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया, हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जीओ, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जीओ, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया, उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जीओ, पंडित पांदे आन, पत्ती बह वाचाइया बलराम जीओ, पत्ती वाचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने घर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

स्वामी सर्व रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाव चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ। निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी। हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिया मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई। मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवै, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाई, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। भये पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारे शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाए, हर प्रभ साचे पाया, जो प्रभ कहे सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया, व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

अध्याय जन नानक हर प्रभु पाणिया राम राजया मिलिया सहज सुभाई इकत सीजै हर प्रभु राम राजया।

निर्जनहारा जिसते खाली कोई नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी। सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजह वाजे, अनहदा चुनकारी। सुन भै बनासी।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण सरनी दासह दासी।

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लाख लाख लाख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर।

हर गुण निदे हर संतन कै वासे आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ पौ भागा।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

हे प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे, दुख ना व्यापै कोई, जल कल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी क्रोध

मुनि सगले तपत बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल मही अल सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिने अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाईया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वाधाइया करी नदर स्वामी सुखा गामी हलत पलत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सूही महला पंजवा भै सागरो भै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोहि थड़ा हर चरण अरादे मिल सतगुर पार लंघाए राम गुर शब्दी तरिए बहुड़ ना मरिए चूकै आवन जाना जो किश करे सोई भल मानो ता मन सहज समाना दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै सुख सागर सरनी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आपनड़ा मन आगे धरिया सरबस ठाकुर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदर थित पाई अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा विछड़ कबहू ना जाई सावड भागन सदा सुहागन राम नाम गुण चीने कहो नानक रवह रंग राते प्रेम महारस पीने अनद बनोद भये नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी शोभावंती नारे राम सहज सुभाए भये कृपाला गुण अवगुण ना बीचारिया कंठ लगाए लिए जाने अपने राम नाम उरतारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारी कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारी गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार त्याए राम जप एक प्रभु अनेक रविया सर्व मंडल छाया ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल थल महियल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए पेख दर्शन नानक बिगसे आप लय मलाए सूही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप वसाया राम करते आप वसाया सर्व सुख पाया पुत भाई सिख बिगासे गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एहो थान सोहाया कर मंदर हट नाले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अरादह कटिया जम की फासी राम काटी जम फासी प्रभ अवनासी हर हर नाम त्याए सगल समग्री पूरन होई मन इच्छे फल पाए संत सज्जन सुख मान है रलिया दुख दर्द भ्रम नासी शब्द सवारी सतगुर पूरे नानक सद बल जासी
दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम। आद जगाद भगतन का राखा, सो प्रभ भया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला। दह दिस पूर रहया जस स्वामी, कीमत कहन ना जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अबचल नीम रखाई। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पाव भंजन, अनहद वाजे धुनिए राम। अनहद चुनकारे तत बीचारे, संत गोष्ठ नित होवे। हर नाम अराध है मैल सब काट है, किलविक सगले खोवे। तह जन्म ना मरना आवन जाना, बहुड़ ना पाईए जुनी है। नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद

तर्त सोहावी ताल सोहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान कीजै बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइए अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

औगण को नाच तारी पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले कट कट वासी सर्ब नवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा सरनागत हर अमृत सज्जन मेरा हौ बिस्म भई जी हर दर्शन देख अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हौ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा तिस जे बड़े अमर ना कोई आदि अंत मद प्रभ रविया जल कल मही अल सोई चरण कमल जप सागर तरिया पव जल उतरे पारा ना

प्राण आधारु गुरु सतगुर कहे आजी साचा अगम बिचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जी हो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हों तिसकी दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए।

सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहेंदा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला। श्लोक महला तीजा सुहबता सुहागनी जा मन लै है सच नाम।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

0: हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम उरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्या
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए।

आरत मोल रस भोजन भाव करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले धन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार महला तीजा धन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए पौड़ी भै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले भौ उपजै पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सुहना भेटिया कृष्ण मरार भौ भाव सब तिसदा सो सच वरतै संसार श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर

पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी है सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीर्थी मन खोटै तन चोर, एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर। बाहर धोती तू मड़ी अंदर विस निकोर, साध भले अनातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी। आपे हुक्म चलाएदा जग धंदे लाया, एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया। दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया, नावैनू सब लोच दी गुरमती पाया। तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख

मद दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मन बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर एह कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

सह की सार सुहागण जान, ताज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जान पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जानो हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजिक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहो रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते। तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब। मैं अंधले क्या चतुराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा। मैं अकथ ना कथना जा।

रहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावां तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावां नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप दिसे वे जात ना हुई एक एक नाही पौ कोई करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचे तारिया अवर न सूझे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहज त्यानी हर कै रंग रत्ता मन मानी मन मुख परम भुले।

तब अगम अगोचर दिए दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बलावल मोहल्ला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सिंह, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देही लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी

दया पत दाता, क्या एह जंत विचारी, मुक्त बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाणी, गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारी, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सवारी, परम पलाने से मनमुख कही है, ना उरवार ना पारी, जिसनो नदर करे सोई जन पाई, गुर का शब्द संभाली, हर जन माया माहे निस्तारी, नानक भाग हुए जिस मस्तक, काल है मार बदारी, बलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा हुए ता सोजी पाए, तिस ते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वस्से मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में है एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज त्या ना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभमाना, जब अपनी जोत खिंच है तू स्वामी, तब कोई करो दिखा विखियाना, आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी नदाना, ज्यो आप चलाए तिवें कोई चाले, ज्यो हर भावै भगवाना।

चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हों तिन बलिहारै जिन हर मन बसाए हर जन को मिलिया सुख पाइय हर गुण गावै सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे क्याए हर जीव आप वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए रंग चलूलै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साच समाए अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा मिलावन महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हों मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अनदिन आनंद हुए मन मेरा गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरण को समसर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग में वडियाई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

हर हर नाम गोबिंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाई परमानंदे रहाउ साकत मूड़ माया के बदक विच माया फिर है फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांदे यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब तूते माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै जो राखै तिवें रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतत पावनु हर संत भगत तारनु हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बसारनु रहाउ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगती गुण गावनु मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बनासा विच आसा हुए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनु जन नानक तिस पग लावनु राग बुलावल महला पंजवा चौपदी घर पहला

तोहि कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लाभहु क्यों तरिये बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन चलारी माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हमें पचे दीपक देख पतंगा सगल शिंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुरु खोलिया पड़ता देख भई निहाल जिन चाख्या तिस आया साध ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल महला पंजवा सर्ब कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जा का वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवा सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होत तन शार। प्रभ चित आई पूर्ण सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम आराध है नाम बखान है हर नामे ही मन राता।

ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमल सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख।

आई है पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना किलविख काटे पज गुर के चरना रहाउ अवर कर्म सब लोका चार मिल साधु संग हुए उदार सिमरत

मिले निस्तरीय। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय महचीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया। बलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमल सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सत गुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु सांगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बलावल महला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे पवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल। बलावल महला पंजवा। मन मैं सिंच हो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहि त्याई। नानक गुर पूरे सरनाई, जिने अपने नाम की पैज रखाई। बलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर घर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिसे आगे ही मारे करतार। नानक दास तां की सरनाई, जा को शब्द अखंड अपार। बलावल महला पंजवा। ताप संताप सगले गए, बिनसे ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन अरोग। गुण गावो नित राम के, एह अवखद जोग। आए बसो घर देश मह, एह भले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे, लह गए बियोग। बलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊठ सधारे शतरपत संतन कै ख्याल रहाओ। हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल, बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल। सत बचन साधु कह, नित जपह गोपाल। सिमर सिमर नानक तरे, हर के रंग लाल। बलावल महला पंजवा। सहज समाद आनंद सुख, पूरे गुरदीन। सदा सहाई संग प्रभ, अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगतर मह, लोचह सब जिया। सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु, कछ बिघन ना थिया। जा का अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। सदा सदा वडियाईया नानक गुर पास। राग बलावल महला पंजवा। घर पंजवा चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यों बालू घर बार। बिन सतबार ना लाग गई, ज्यों कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे, सत देख बीचार। सिद्ध साधक गिरही जोगी, ताज गए घर बार रहाओ। जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्ट मान सब बिनसी है, क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है, देख नैन पसार। एक चाले एक चाल सह, सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया, से अस्थिर हर द्वार। जन नानक हर का दास है, राख पैज मरार। बलावल महला पंजवा। लोकन किया वड़ियाईया, बैसंतर पागों। ज्यो मिले प्यारा अपना, ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल हुए, तो भगती लागो। लपट रहे मन बासना, गुर मिल एह त्यागो रहाओ। करो बेनती अत घनी, एहो जियो हमागो। अर्थ आन सब वारिया, प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुरते छुटे, दुख अर रागो। हृदय परगास प्रगट भया, निसबासर जागो। सरल सुहागन आया, जिस मस्तक भागो। कहो नानक किन पाया, तन मन सीत लागो। बलावल महला पंजवा। लाल रंग तिस को लगा, जिसके वड भागा। मैला कदे ना होवई, नह लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाईया, मिलिया सुख पाई।
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी, तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा अवर नहीं चारा। नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर से वह अपना काहे फिर हो अपागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

तुम मिलहु दयाल, निस्बासर मन आनंद होत, चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ, तिन लागो पाल, मोको दीजै दान प्रभु, संतन पागराल। उकत सियानप कछ नहीं, नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते, काट हो जम जाल। बिनो करो करनापते, पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग, नानक सुख साल।

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया।

ना जापै हर हर हर हर जापी अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथ हर के गुण गाई बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपूरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो न विसरै प्रभ परमानंद बलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई नाथे पै परमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोवत हर जप जागया

तरे कुल कटंब उधारी सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारी नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगतां का आसरा अन नाही ठाऊं तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊं कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन यों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको पहो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यों तू राख है त्यों रहा प्रभ अगम अपारी कर्म कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक करिय साध संग हर हर गुण गाओ बलावल महला पंजवा कमन कमन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं बसास तू महा उदमादा खर का पैखर तौ छुटे जो ऊपर लादा रहाउ जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमर है नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना बलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया।

आ पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वडियाई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाऊ बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बलावल महला पंजवां कर तर मस्तक थापे।

प्रभ राखता भगतन की यान। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाओ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कै। जो कह सो करना पये प्रसन्न गोपाल राई।

आवी गुर सिख प्यारी रहाओ। करन करन समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवां सिमर सिमर प्रभ अपना, नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग, ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ, कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न भए बाछत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती, हिद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाऊ। मात पिता बंदब तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाइय सब भला मनाव है, साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल भय हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल भए राखे प्रभे आप, नानक प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण भए काम पौ नाठा प्रम मिट गया रव्या नित राम। साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव। प्रगट भए संसार मह फिरते पहनाम, नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता,
पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास।

पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखियन

पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

नमस्कार दंडौत वंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की।

करहो सोई पल हमरे पेख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख।

पूर रही दिन सार रात रहाओ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रतना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुख दाती,

सतगुर अपने कौ बल जाई, जिन पैज रखी सारे संसार रहाऊ। कर मस्तक धार बालक रख लीनो,

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा।

सुनो तुम भाई जो कालर भीत गिरी है रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है भलो देख दुख भरी है आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरिय निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया हर जन स्यों बाद उठरी है नानक का राखा।

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन। बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा। बिखिया मह लपटाए जरे, अंध कूप मह परे ओ प्राणी। परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा। गुर भेटै काढै बाहां परे। बिलावल महला पंजवा, मन तन रसना हर कीना। पए आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना। रहाउ इयानप ते सब पई सियां।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि सर

नाम जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाऊ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फासी साची दरगाह का निशान जो तुम करहो सोई पल मानो मन ते छूटै सगल गुमान कहो नानक ता की सरनाई जहां का किया सगल जहान मिलावल महला पंजवां मन ताने अंतर प्रभ आही हर गुण गावत पर पकार नेतर तिस रसना का मूल किस नाही रहाओ कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोहित पाए पाव सागर पार पराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही बलावल महला।

तेरे काटिया हिन मह हुए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावन महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव। आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड भागी अंतर जामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन स गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए।

आई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया पर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बलावन महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बकार निस भोर भया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बाहा पकर प्रभ काढ लया बलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाओ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दा

पत पावन प्रभ बिरद तुम्हारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास।

सुल भया गुरपुर पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अबनासी नानक उचरे हर की जया बलाव महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

ताजी अभमान अरचिंत बरानी साध है सरन पाई जप जप नाम तमारो प्रीतम तन ते रोग खई महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दई कहो नानक गुर पूरा पेट्यो आवन जान रहे बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो पर

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे, उलझियो अलम करंद कमल जियो, अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे, अन ते टूटी है रिख ते छूटी है, मन हर रस घूटी है।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको, निःफल धर्म ताहे तुम मानु। साच कहत मैं जाको, जैसे पाहन जल मह राखे हो, पीदे नाही ते पानी, तैसे ही तुम ताहे पछानू।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे। इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे। त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविए अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझिया। एह मन नाचै सतगुर आगे अनाद शब्द धुन तूर वजैया। हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर धार चोऐ अत निर्मल जिन पिया तिन्हीं सुख लहिया। मन हट कर्म करै अभमानी ज्यों बालक बालू कर उसरैया। आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया। हर सर सागर हर है आपे एह जग है सब खेल खलैया। ज्यों जल तरंग जल जल है समाव है नानक आपे आप रमैया। बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया। अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया कृपा करहु मधुसूदन माधो। मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाउ तजै गिरहस्त भया बनवासी। एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया धावत धाए तदे घर आवै। हर हर साधु सरन पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी। आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै। गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर होवा। मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करै बूझै नहीं कृष्णा। मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे। मन मांग है रिद सिद्ध चेटक चिटकैया। तृप्त संतोख मन शांत न आवे मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया। साधु सरन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया। नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जात सैन मिलिया हर दैया। संत जना की हर पैज रखाई भगत वचन अंगीकार करैया। नानक सरन परे जग जीवन हर हर कृपा धार रखैया। बलावल महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया हम आकल बिकल भई गुर देखे। हम लोट पोट होए पैया रहाओ हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया मन तन काट देऊ गुर आगै। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया कोई आन संदेसा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्तक काट देऊ चरना तल। जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है। गुण कामन कर हर प्रभ लहिया भगत वचल ओवा को नाम कहियत है। सरन प्रभु तिस पाछे पैया थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां। मन दीपक गुर ज्ञान बलैया रस रस भोग करे प्रभ मेरा। हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश कीजै सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई प्रभ लियो सुहागन।

सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की, उपमा जात ना कही, ताजे आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हौ जाऊं सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, ताजे आन कतह ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उदार, तै तरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनद पूर्ण साध। नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत। तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जम ना पेख नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर सरन सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लह ना पेव, नित करह मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जां की महा बिखड़ी कार। तां की मित न जाने कोए, जल थल मही अल सोए। कर बंदना लख बार, थक परियो प्रभ दरबार। प्रभ करहु साधु तूर, नानक मन सापूर। बलाव महला पंजवां, प्रभ जन्म मरण निवार। हार परियो द्वार, गह चरण साधु संग। मन मिष्ट हर हर रंग, कर दया ले हो नर लाए। नानका नाम त्याई,

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम डर बांधे आवन जाने। क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़। तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पावे, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा

मूक शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराउ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ

डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

बिनस बनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल मोहल्ला तीजा वार सत कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरतै अवर ना कोई।

गुरमुख विरला बूझै कोई। हृदय जपनी जपो गुण कासा, हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी। जन पग लग त्यावो हुए दासन दासा रहाओ। सोमवार सच रहया समाई, तिसकी कीमत कही न जाए। आख आख रही सब लिव लाई, जिस देवै तिस पल्लै पाई। अगम अगोचर लखिया न जाए, गुर कै शब्द हर रहया समाए। मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया। आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै। प्रेम भगत करे लिव लाए, हौ मैं ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुध सार, गुरमुख करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हौ मैं मालक होए। दर सच्चै

आई, आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

वार वार दिन सनहण तिमें संसार आवा गौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरख आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

तह काय परमे भूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै एक

जाहि, थिति वार सब आवह जाहि, गुज शब्द निश्चल सदा सच समाहि, थिति वार ता जहां सच राति, बिन नावै सब परमह काची, मन मुख मरह मर बिगति जाहे, एक ना चेत है दूजै लुवाहे, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की तोन गुर विचार, बहुते पेख करह पेख तारी, पाव पाव ब्रह्म है काची सारी, ऐथ सुख न आगै होए, मन मुख मुए अपना जन्म खोए।

रह मुग्ध गुवार नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर सिंह रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक।

हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम। अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मुग्ध मलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर तारी राम। जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम।

मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योती पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाई है चरण राज्य मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना तावह बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावह बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

वास्याहु सखी असी तिरका मंगल गावे है। तज मान सखी माते अपने प्रीतम भाव है। तज मान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही।

जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम बड भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाहां पकड़ तम ते काढ़िया।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल है।

हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बुलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बुलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिये सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर हर भगता का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुझे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़ सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंद है ते ब्राह्मणा जे चल सत गुर पाए जिन कै हृदय हर वसै हम मैं रूप गुआई गुण रव है गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाई इस जुग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेत लाई नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाई महला तीजा सतगुर की सेव ना कीतिया शब्द न लगो पाऊ हम मैं रोग कमावना हत दीर्घ बहु सुआऊ मन हट कर्म कमावनी फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लए मलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी सब वडियाइयां हर नाम विच हर गुरमुख त्याईए जे वस्त मंगीए साई पाईए जे नाम चित लाईए गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्ब सुख पाईऐ गुरपूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाईऐ जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाईऐ सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरै प्रभ मेल मलाई सतगुर का दर्शन सफल है जेहा को इच्छे तेहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होआ सच वसिया मन आई सच त्याए अमरा पद

नानक जिने अंदर सच है से जन छपहना किसे देश पाई। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा कहो नजर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहाराजे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किछ हर करावे सो ओहि करहे सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगे, करमी सत गुर भेटी है, ता सच नाम लिव लागे, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजै पाए सूते कबहू ना जागै।

हर नाम ना पाया बिरखा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी मोहताजी लोक कढ़दा होर त हट ना वथ ना विसाहु भगत जना को सनमुख होवे सो हर रास लए वे

इस जोग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत परम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जने दी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हम मैं मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए किसे सरे वो प्राणी हो किस बिन अवर ना कोए गुरमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिन्नी गुरमुख हर नाम धन ना खट्यो से दवालिए जुग माहे ओए मंगदे फिर है सब जगत में कोई मुहे थुक ना तिनको पाए पराई बखीली करह अपनी प्रतीत खोवन सगवा भी आप नखाहे जिस धन कारण चुगली करह सो धन चुगली हाथ ना आवे ओए पावे तिथे जाहे गुरमुख सेवक पाए हर धन मिले तितों कर्महीन लै ना सकह होर थे देश संतर हर धन

नारायण का अन्न, पांच चोर तिना घर मोहन, हम मैं अंदर सन्न, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत भरम लुटाया देख सियो रचह रचन, दुष्टा से ती पिरहड़ी जान सियो वाद करन, नानक साकत नरक मह जम बदे दुख सहन, पै किरत कमाम दे जिव राख है तिवै रहन, महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया ताणन ताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस, हिरदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस, हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस, नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुरबान है तिस, जिनको पूर्व लिखिया रास संत जना सियो तिस, पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया, बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच पूर नानक बख्श मलायन सच्चै शब्द हदूर महला तीजा।

आनंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई सत संग

तनमंता हर निर्तन मने ताकी कशु ना कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

जाई, अनक जतन कर राखी है, फिर लपटाई, जरा जीवन जो बन गया, किस किया ना नीका, एहो जियरा निर्मूल को, कौडी लाग मीका, कहो कबीर मेरे मा

एक भयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, इह मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी, सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी, हर नाखस नाख बिदरियो, घर के देव पितर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो।

त्रिग तन त्रिग धन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी जिस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतम जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी।

होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाव ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

अहंकार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह सरन कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारनी चात्रिक दुख पावे।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दीसह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा। जित दिन उनका सुआओ होई ना आवै, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाउ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, इनके चरण मलहो हर दसना। शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। किस जन की वड़ियाई हर आप वधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बसे हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लई, मेरे मन हर जप हर नित पड़ै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ै रहाउ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरै, हर एक को बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पई, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा धियै, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा ध्याए तू तुद ले छड़ै, गोंड महला चौथा।

मेरा वीर मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर जन नानक की हर आस पुजाव हो हर दर्शन शांत शरीर शका एक राग गोंड महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाऊ सुनतो करता पेखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता लिपतो करता भक्तो करता बूजत करता आवत करता जात पी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गोंड महला पंजवा फाक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहे संभाए ले पग धार है सास लेख लै तो उदर है हर गुण गाए ले मन समझ छोड़ आवाए ले अपने रहन कोट

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरै, थिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड लभाए ले। तू हुआ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम

तिहाई, काटे अवकट जट कतह सहाय रहाऊ। रंक राहु जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुरान। बियो पूछना मसलत तरे, जो किस करे सो आपे करे। जा कायंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवां, जां कै संग इहो मन निर्मल। जां कै संग हर हर सिमरन। जां कै संग किल बिख होहे नास। जां कै संग हृदय परगास। से संतन हर के मेरे मीत, केवल नाम गाइए जां कै नीत रहाऊ। जां कै मंत्र हर हर मन वसै, जां कै उपदेश परम पौ नसै। जां कै कीर्त निर्मल सार, जां की रेन बांछै संसार। कोट पतत जां कै संग उधार, एक निरंकार जां कै नाम आधार। सर्ब जिया का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवां, गुर की मूरत मन मह ध्यान। गुर कै शब्द मंत्र मन मान। गुर के चरण हृदय लै धारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत को परम भुलै संसार, गुर बिन कोय ना उतरस पार रहाओ। भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भगति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद ऊर्द कमल बिगास, अंधकार मह भया परगास। जिनकी आसो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ एह जनाई, बिन गुर मुक्त न पाई है पाई। गोंड महला।

गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवां, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाऊ, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खो है सात जना पग मल मल धो है पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरीऐ गोंड महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना घट घट रमैया सब महचीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद तन तन प्रभु का प्रभ की जिंद रहाओ आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ ताज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम गोंड महला पंजवां धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग गुरसो प्रसन्न भये वड भाग आठ पहर गाइय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल जुए जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवां कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवारे पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरिये संसार वडभागी पाइये पुरख अपार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटह उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

गूण महला पंजवा संत का लिया तरत बदारो संत का निंदक आकाश ते टारो संत को राखो अपने जी नाल संत उदारो तत खिण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद कै कै काम रहाओ संत कै ऊपर दे प्रभ हाथ संत कै संग बसै दिन रात सास सास संत है प्रतपाल संत का दुखी राज ते टाल संत की निंदा करो ना कोए जो निंदै किसका पतन होए जिस को राखे सिर जनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया बसास जियो पिंड सब तिस की रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गुण महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ नारायण सब माहि निवास नारायण कट कट परगास नारायण कहते नरक ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे नारायण मन माहे अधार नारायण बोहित संसार नारायण कहत जम भाग पलायन नारायण दंत पानी दायन नारायण सद सद बख्शिन।

साधसांग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जाको राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार।

पाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा, अचर्य कथा महा अनूप, परात्मा पार ब्रह्म का रूप, रहाउ ना एह बूढ़ा ना एह बाला, ना इस दूख नहीं जम जाला, ना एह बिनसै ना एह जाए, आद जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ताकी है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गत मित कछु ना पाए, नानक ताके बल बल जाए, गोंड महला पंजवा, संतन कै बलिहार जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघन ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै, रहाओ पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

जागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां।

मराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी गुर कै सिख सत गुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी जैसा करे सो तैसा पाई अभमानी की जाड़ सर पर जाए ने धरिया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले झख मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा बिन बोले क्या करह बिचारा कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कभो ना डोले गोंड नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सुआरे अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे घास का पूला कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चहो दिस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा पुरखोत्तम कट बिन सह गगन ना जाए ले मोहे बैराग भयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म है किन जियो दीन रे हर मह तन है तन मह हर है सर्व निरंतर सोए रे कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे राग गोंड बाणी कबीर जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डार्यो हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो हस्त भाग कै चीसा मारे या मूर्त कै हौ बलिहारे आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ रे महावत तुझ डारो काट किसे तराव हो काल हो साट हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर कौ दीना कुंचर पोट लै लै नमस्कार बूझी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया भर लीना मन कठोर अजहू ना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद मह जन की जिंद गोंड ना एहु मानस ना एहु देव ना एहु जति कहा वैसे ओ ना एहु जोगी ना अवतूता ना इस माए ना काहू पूता या मंदर मह कौन बसाई ता का अंत न को उपाई रहाओ ना एहु गिरही ना ओदासी ना एहु राज ना भीख मगासी ना इस पिंड न रख तू राती ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती ना एहु तपा कहावै सेख ना एहु जीवै ना मरता देख इस मरते को जे को रोवै जो रोवै सोई पत खोवै गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरन दो मिटवाया कहो कबीर एहु राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस गोंड टूटे तागे निखुट्टी पान द्वार ऊपर चिलका वह कान कूच बचारे पुए फाल
ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨ ਕੋ ਖਾਟ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछै परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वा कै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए साधु बिन तैसे अवगत जाइए जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरे धोई घोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिए परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजार है सोदे पांच पलीत है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछान है सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चर कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टहकेव धन ओए संत जने ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन्न कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग निकावन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में भक्ते दूधा धारी

बनारस अस बसता मुख वेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोविंदं पाज नामा तरस भाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाई प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत ना फेरो रहाओ ज्यो मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यो बिखी हिरे परनारी कौडा डारते हिरे जुआरी

कर सोई मकंद मुक्त का दाता सोई मकंद हमरा पित माता जीवत मकंदे मर्त मकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ मकंद मकंद हमारे प्राण जप मकंद मस्तक निशान सेव मकंद करे बैरागी सोई मकंद दुर्बल धन लादी एक मकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार मेटी जात हुए दरबार तुही मकंद जोग जोग तार उपजियो ज्ञान हुआ परगास कर कृपा लीने कीट दास कहो रवदास अब तृष्णा चूकी जप मकंद सेवा ताहू की गोंड जे हो अठ सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पुजावै जे हो कूप तटा देवावै करे निंद सब बिरथा जावै साधका निंदक कैसे तरै सर पर जान हो नरक ही परे रहाओ जे हो ग्रहण करे कुल खेत अर्पे नार शिंगार समेत सगले सिमरत सर्वनी सुने करे निंद कवने नहीं गुने जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे।

निंदक का प्रगट पाहारा, निंदक सोद साध बिचारिया, कहुरव दास पापी नरक सदारिया जोड़। राम कली महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपो निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसे त्याना, अब ही किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गति, हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाउ, कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले, लोभी जियड़ा थिरना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरन लखाए मंडल मह आए, जीवन साजह माई, एक चले हम देख है स्वामी, पाहे बलंती आई, ना किसी का मीत, ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जेतू देव है, अंते हुए सखाई, राम कली महला पहला, सर्ब ज्योत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नरहरी, जीवन तलब नवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ, जह पीतर कट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही, तिनकी सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही, आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहया भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जह देखा तह रहया समाए, अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लागस बाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, परता पेहगा प्राणी, राम कली महला पहला, जित दर वस्स है कवन दर कही है, दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरियै, जीवत्या नह मरियै रहाउ, दुख दरवाजा रोह रखवाला, आस अंदेसा दोए पट जड़ी, माया जल खाई पानी कर बांधिया, सत कै आसन पुरख रह, किंते नामा अंत ना जानिया, तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना, आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही, क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह नरासा, तो नानक एक मिले, इन बिद सागर तरियै, जीवत्या इयों मरियै, रहाउ दूजा, राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजै लोक सुने, पत झोड़ी मंगन कै ताई, भीख्या नाम पड़े, बाबा गोरख जागै, गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार ना लागै रहाउ, पानी प्राण पवन बंद राखी, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक अर जोगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे, जे तिन मिला ता कीरत आखा, ता मन सेव करे, कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिल है जन नानक, तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला, सुनमा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले, ऐसी जुगत जोग कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवतूत ऐसी मत पावे, अहंस सुन समाध समावे रहाउ, भिख्या पाए भगत पै चले, हुए सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप हुए आसन पावे।

दास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया मान सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापे ज्यों संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी संस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाउ साच भेट बैसन कौ थाउ सत संतोख होवे अरदास ता सुन सत बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे पाउ पवे तेत आए तुरत छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ ना होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हूं मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबहै पत सारी, घर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बेयोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सतजुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सतजुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख

जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे, हौ काटो काट बाद सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे, राम कली महला चौथा, जे वड पाग हो वह वड मेरे, जन मिलदियां ढिल ना लाइए, हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित नवाइए, राम मुको हर जन कारे लाइए, हौ पानी पखा पीसो संत आगे, पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ, हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मलाइए, सतगुर जेवड अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइए, सतगुर सरन परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए, एक अपने सवाए आए बह गुर आगे, जो बगल समाध लगाइए, बगला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाइए, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए, राम कली महला चौथा, सतगुर दया करहो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लग है गुर चरनी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर ना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ, मेरे एक खिन प्राण ना रह बिन प्रीतम, बिन देखे मरह मेरी माया, तन तन वड भाग गुर सरणी आई, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जो पाया, नाम हीन फिर है सेल कटे, तिन कस कस नक वढाया, मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया, राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम सुमारी, राम गुर हर हर नाम कंठ तारी, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारी रहाओ, कोट कोट ते तीस त्याव है, ताका अंत ना पावह पारी, हृदय काम कामनी मांग है, हृद मांग है हाथ पसारी, हर जासु जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारी, जे वड भाग होवे ता जपिए, हर पहो जल पार उतारी, हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखे कंठ जन तारी, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारक हर प्रित पारी, राग राम कली महला पंजवां घर पहला।

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

तल ऊपर आवहु ऐसी सेव कमावहु आपस ते ऊपर सब जानहु तौ दरगाह सुख पावहु संत हो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई सतगुर मिलहो नवे निध पावहो इन बिद तत बिलोई परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो आत्म चीनो पाई निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर।

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इह जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीत ना आवस दूजी बातां सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूं जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

तू सागर हम हंस तुम्हारी, तुम मेहमान कलाला, तुम देव हो तिन संक न मानु, हम पुंच है सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारी, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सदगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए।

वा तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल ते ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाले नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग सूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मह पवन समाया ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदहाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

रहाउ प्रथमे वसया सत का खेड़ा तृतीये मह किस भया दुतेड़ा द्वितीया अर्दो अर्ध समाया एक रहया ता एक दिखाया एक सूत परोए मणिए गांठी भिन भिन भिन भिन तनिए फिरती माला बहु विद पाए खिंचया सूत ता आई थाए चहो मह एक मत है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इउं किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाउ दूजा राम।

महला पंजवा करन करावन सोई आन ना दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै दीठा रहाव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भये निकाम तन मन सी तल अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जा।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हों सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

अनक पाप ता के पानी हार जां को मया भई करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखै कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान।

तू आगे बंद छाड वडाणी तात मूड़े इहां बसना रात मूड़े माया के माते तै उठ चलना रात रहे हो तू संग सुपना रहाओ बाल व्यवस्था बार के अंद पर जोबन लागा दुर्गंध तृतीया व्यवस्था सिंचे माई बिरध पया छोड़ चलियो पछताई चरंकाल पाई दुर्लभ दे नाम बिहूनी होई खे पशु परेत मुगद ते बुरी तिसै ना बूझै जिन ए श्री सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुम्हें छडाव हो छुटकह बंद बख्श मलाव हो नानक जागे अंद राम कली महला पंजवां कर संयोग बनाई काश किस संग रहे हो याना राच प्रित पारै नित सार संभारै अंत की बार ऊठ सदारै नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ परानी रहाओ तीरथ नाए ना उतरस मैल कर्म धर्म सब हों मैं फैल लोक पचारै गत नहीं होए नाम विहूणे चल सहरोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सोदे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपै जिसे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्ते, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, ता छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हुए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान, संत

सो परवान जिस हृदय वसाई, नानक ते जाने उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओह चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उधार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे।

सो भूखा रह, इस संग राचै सो कछु न लह, इस त्याग सतसंगत करै, वड भागी नानक ओह तरै। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभ।

पित हर तन रास नरास एह पित काटी बंद हर सेवा लाई हर हर भगत राम गुण गाई बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे है हर जन अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ आए बने ओ पूर्वला भाग जन्म

काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाओ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत पर

परमेश्वर हर ना चेतियो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह।

सगल अपावना चालह संग भव जल तरिये प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हों मैं व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद जो जन खाए ता का रोग सगल मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कभो न बिसर गोपाल तेरे दास की हो आतूर नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुद बिन दूजा नाही ठाऊ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगाह पावो ठाऊ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिन सहराचे हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पवो भागा निरपो मन बसे अमृत नाम रसना नित जपे कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा धन लाहे टूट ना आवे अखुट भंडार नानक भगत सोह।

का पूता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवे, अंत नहीं।

दुष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिसे आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख।

संकरा नहीं जानह पेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जानह मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोड़ आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अरा दह जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत।

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरै पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिया तेरी पास गुर का उपदेश सुनी जय।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछतानी रहाउ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहन ना जाई, साचे सच अलख अपेवा रहाउ, करन कराम ने आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा कर नीत, सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, किस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिदमाहे अरादो।

चित लागा, तन तन संयोग सभागा, संत की धूर लागी मेरे माथे, तिल विख दुख सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी, जन का सफल दर्श डीठा।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न नवारी सतगुरु देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी ले

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए तृण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप

किंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाउ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कै ताई, गाफल संग न तसु आ जाई, तरत तो हो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर छाने, जिन दिया तिसै ना चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जा

जहां कह राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसका मस्तक हाथ गुरु।

कृपा करै साध संग सो पव जल तरै अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल बिकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पूर्व कमाणे छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा कृष्ण ना बूझे बहुत हया असाद रोग उपजया संत दुखन देह बलासी महा खया जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाव दर्शन पेखत हुए निहाल जाकी धूर काटे जम जाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्य सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण।

मिन से अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास घट घट रव रहा गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावहु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मैं होए निवास संत संगत मैं होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपुरा मेरा गुरपुरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए नींद सहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन से सब दुख सहज आनंद करहो मेरे भाई गुरपुरै सब चिंत मटाई।

बिरख श्यामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओट ले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्बाना रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानो जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सधावै अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद।

अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कह सिमरै पावै पद निर्वाना भई दयाल कृपाल संत जानू।

सुबा सुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध घटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन हुए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चांद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहे सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश न आया सुनिए तीर्थ पास न बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार न बैठा जे

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जां सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना आख गुणा कल आई है।

ब्रह्मा वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुबदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जम डंड फूटै खापर भीख न पाए बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े

कैसे उतरस पारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारी सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रिभवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाइए, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटे मेल मलाई, नाम रतन निर्मूल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हम मैं ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागे, जम जंदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुर्मत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गाते अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी,

तत्परुता जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द बजे दिन राती, अवगत की गाते गुरमुख जाती। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्बानी। सुन समाद सहज मन राता, तज हौं लोभा एको जाता। गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया। राम कली महला पहला, साहा गणह ना करह विचार। साही ऊपर एक कंकार, जिस गुर मिले

पूजह सैला, बिन हर राते मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ, वाचे वाद ना बेद विचारे, आप डुबे क्यों पितरा तारे, कट कट ब्रह्म चीने जन कोए, सतगुर मिले तां सोजी होए, गणत गणिये सहसा दुख जीए, गुर की शरण पवे सुख थीए, कार्य अपराध शरण हम आया, गुर हर पेटे पुरब कमाया, गुर शरण ना आइए ब्रह्म ना पाइए, परम पलाइए जन्म मर आइए, जमदर बहंत हो मरे बिकार, ना हृदय नाम ना शब्द आचार, एक पांडे पंडित मिस्र कहाव है, दुखदा राते महल ना पाव है, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मध्य को जन आपार, एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक, गुरमुख विर

आवे राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

सुंदर दुंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभ की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाव, तुम शरण लागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाव, हौ मैं गर्भ जाए मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द

भया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई है की नाम विसार है परम गया रहाउ जत सत संजम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संजम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया जां जम ताए केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावे राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंत काल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया जां आए तां तिने पठाई क्याले तिने बलाई लया जो किश करना सो कर रहया बख्शन हारे बख्श लया जिन एहो चाख्या राम रसायन तिन की संगत खोज पया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ सरन पया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत पया आप मार गुरमुख हर पाई नानक सहज समाई लया राम कली दखनी महला पहला जात सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस

पर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई।

काट काट कुंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई, राम कली महला पहला, आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया, तरण गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी, संत हो रहाओ, ममता मार हों मैं सुख है, तेरे भवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मन मह राखै, सतगुर शब्द विचारी, सिंही सुरत अनाह दवाजै, कट कट जोत तुम्हारी, परपंच बेन तही मन राखिया, ब्रह्म अग्न परजारी, पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल जोत अपारी, राव सस लोके इहो तन किंगरी, वाजै शब्द निरारी, शिव नगरी मह आसन औदू, अलख अगम अपारी, काया नगरी इहो मन राजा, पंच वसह विचारी, शब्द रवै आसन घर राजा, अदल करे गुणकारी, काल बकाल कहे कह बपरी,

ना पाखांडे औदु गुरमुख शब्द बिचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जात सत शब्द बिचारी शब्द मरे मन मारे औदु जोग जुगत बिचारी माया मोह भवजल है अवदु शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदु बाणी भगत बिचारी एहु मन माया मोहया औदु निकसै शब्द बिचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

जोग जुगत एव पाए, नदरियावंदा सब किस बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, तां एह सोझी पाए, एहो जोग न होवै जोगी, जे कटंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह, एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग न जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवै सोई बूझै, जोग जुगत सो पाए, जोगै का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनो नदर करे सो पाए, अंतर बाहर एको वेखै, विचों भरम चुकाए।

परम पलाई उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हो गुर सलाही सदा अपना

भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करहै फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करहै दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावां शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच्चो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूजै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचै नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईऐ शब्द विचारी जो प्रभ खोजहै से ही पावहै और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेवहै गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुर ते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किस करना सू कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सिरट अपाए सिर सिर तंदै लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावो सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना।

बनत बनाई। सतगुर पीटै सूजन सीजै जिस हृदय नाम वसाई। सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रहया विस्माज मेरा प्रभ रव्या सर्ब थाई। राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

सिर धरिया। अब तू सीज पावे नहीं सीजै, कारज सबरै मन प्रभ त्याइजै। इहा उहा एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही। तिस सेवत मन

बिहावै माए बाप पूत, काहू बिहावै राज मिलख वापारा, संत बिहावै हर नाम अधारा, रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ, काहू बिहावै वेद अर बाद, काहू बिहावै रसना साध, काहू बिहावै लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मरारी, काहू बिहावै खेलत जुआ, काहू बिहावै अमली हुआ, काहू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याय, काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाए, संत बिहावै कीर्तन गाए, काहू बिहावै दिन रैन चालत, काहू बिहावै सो पिड़ मालत, काहू बिहावै बाल पढ़ावत, संत बिहावै हर जस गावत, काहू बिहावै नट नाटक निरते, काहू बिहावै जिया एह हिरते, काहू बिहावै राज मह डरते, संत बिहावै हर जस करते, काहू बिहावै मता मसूरत, काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोदत जीवत, संत बिहा

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मनह सुखाने।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नस है हर सिंह दे मलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का